0: फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोजख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।
1: वा

0: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी
1: हजारों में बहत्तर तन थे तस्लीम रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सर्वे मूजिब वेंसवेला में जिलसिले सबब फोतिन जो अंग 1,00,000 ताईं वञी सघे थो। अमरीकी सदर पारां इदारनि खे वेंसवेला जी तकड़ी मदद करण जी भेद आहे। जेकॾहिं ईरान खे एटमी हथियार मिली विया त पहिरीं कलाक में इस्तेमालु कंदो। कंहिं बि सूरत में ईरान खे एटमी हथियार हासिलु करण न ॾींदासीं। अमरीकी सदर ट्रंप जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप ज़रात बाबति एग्ज़ीक्यूटिव आर्डर ते सही करे छॾी। संदसि चवणो हो त ज़रात जे शोबे में नई जिदत आणींदासीं। जल्द ईरानी फंड्स मां कणक, सोयाबीन ऐं मकई ख़रीद कंदासीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ऐं अमरीकी सेंट कॉम अख़्तियारनि दोहा में मुलाक़ात कंदियूं। मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में इख़्तिलाफ़ ख़तम करण जी कोशिश कई वेंदी। ईरान ऐं विच ओभर जी रियासतुनि सां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं जेके अॻु में न आहिनि कयूं। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंट्स जो बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट खे इंटरव्यू। जे डी वेंट्स चयो त अमरीका ऐं ईरान सिधी रीत राब्ते जो चैनल क़ाइमु करण ते इतफ़ाक़ कयो। सिधी रीत राब्तनि दौरान मुख़्तलिफ़ मुआशी मरातुनि ऐं सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। कॾहिं अरब अमारात ईरान सां अहिड़ा नवां राब्ता क़ाइमु कया आहिनि जेके अॻु न हुआ। ईरान आबनाए हुरमज़ मां 4 आयल टैंकर्स वापसि मोकिले छॾिया। बरतानवी अख़बार मूजिबि जहाज़नि पासदारनि इनकलाब जी हिदायतुनि ते रस्तो तब्दील कयो। हिन खां अॻु ओमान जहाज़नि ते आर्ज़ी बहिरी रस्तो ॾिनो हो। ओमान जे ॾखिण ओभर साहिली इलाइक़े में कार्गो जहाज़ ते हमले जा इतलाउ। आबनाए हुरमज़ खे कंहिं हिकु मुल्क जी मिल्कियत तौरु क़बूल न कंदासीं। खिते में जटादार अमुन खे यकीनी बणायो वेंदो। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त खिते में इतिहादनि जी तरक़ी ऐं खु़शहाली चाहियूं था। 30 जून ते टेक्निकल टीमूं ॿीहर ईरान सां एटमी प्रोग्राम ऐं पाबंदियुनि बाबति ॻाल्हियूं कंदियूं। आबनाए हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आबनाए हुरमज़ मां गुज़र ईरानी बहिरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदारान इनकलाब चयो आहे त आबनाए हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवणो हो त अमरीका तय थियल मफ़ाहम ते अमल करे। इसराइली फ़ौज जो लबनान में जंगबंदीअ जूं भञकड़ियूं जारी। ॾखिण लबनान में गाॾीअ ते इसराइली फ़ौज जे ड्रोन हमले में 2 ॼणा मारिजी विया। परॾेही काबरू इदारे मूजिबि गुज़िरियल ॾींहं बि लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 2 ॼणा मारिजी विया हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब कुदस फोर्स जे सरबराह ख़बरदार कंदे चयो त इसराइली फ़ौज खे लबनान जे समूरनि इलाइक़नि मां निकिरणो पवंदो। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमुन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अला पाक पाकिस्तान खां कमु वरितो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कमु कयो। संगरार जी मासूम प्रिया कुमारी खे ज़मीन गिही वई या आसमान खाई वियो। 5 साल अॻु संगरार में योम आशूर ॾिहाड़े ते सबील विराईंदे गुम थियल मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ हुकूमत जो हिकु बि वाइदो वफ़ा न थियो। ॿिनि सूबाई हुकूमतुनि दौरान 4 IGs तब्दील थिया। सभई सखड़ियूं दावाऊं ऐं ठला आसरा ॾींदा रहिया। अमली तौरु कुझु बि न थियो। रोहिड़ी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घरू वज़ीर सयाल लंजार चयो त प्रिया कुमारी जंहिं धाड़ेल वटि हुजण जो इतलाउ हो उहो मारिजी वियो आहे। कच्चे में ऑपरेशन जारी आहे पर अञा ताईं प्रिया कुमारी जो पतो पइजी नाहे सघियो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सख़्ती शहादत जी निसोरो ई नाज़, सख़्ती शहादत जी निसोरो ई नाज़, रिंद परूड़ी निराज।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के यो इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तो संजय वडे वजीर इमराद अली शाह पंजे पैगाम में चयो है तो करबला की मिट्टी से लिखल कुर्बानी जो दास्तान कयामत तक इंसान की रहनुमाई कद रहो। हजरत इमाम हुसैन ए करबला के बेन शहीदन की अजीम कुर्बानी उम्मत मुसलमान जो सरमायो है। बिंजुला जिले में फोतियुन जो अंग 235 थी वो 1500 का वधीक जख्मी। सेहत वाली वजारत तस्दीक कर छी है तो स्वयं इमारतों पर 10,000 का वधीक मानू मलबे हेठा दबल हण जो खदशो। खरियल इमारतन जी मलबो हटाने लाय ऑपरेशन जारी। बिंजुला के वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी। अमरीकी जूलॉजिकल सर्वे मूजिब बिंजुला में जिले सब फोतियुन जो अंग 1,00,000 तीन वही सके तो। अमरीकी सदर पारा इदार के बिंजुला की तकड़ी मदद करण की हिदायत। जैसे ईरान के एटमी मिली वह तो पे कलाक में इस्तेमाल कह कें भी सूरत में ईरान के एटमी हथियार हासिल कर नींदी। अमरीकी सदर ट्रंप जो मीडिया से गाल सदर ट्रंप ज़रात बाबत एग्जीक्यूटिव आर्डर से सही कर छी। सदस चवण हो तो ज़रात के शोबे में नई जिदत आनी जल्द ईरानी फंड्स में कणक सूबाइन ए मकई खरीद कंदी। ईरानी पासदान इनकलाब ए अमरीकी सीनेट काम अख्तियार दोहा में मुलाकात कंदियों। मुलाकात दौरान बिन्हीं मुल्क विच में इख्तिलाफ खत्म करण की कोशिश कई वेंदी। ईरान ए विचोबर की रियासत से अड़ी गाल कर रहा हूं जी अग में ना क्यों। अमरीकी नायब सदर डीडी वेंस जो बरतानवी न्यूज वेबसाइट के इंटरव्यू डीडी वेंस अमरीका ए ईरान सिधी राबते में जनरल कायम करने इतफाक किया है। सिधी राबतन दौरान मुख्तलिफ माशी मरातन ए सहकार से गालबोल थी। गडियल अरब इमारात ईरान से अड़ा नवा राबता कायम कया जी अग न हुआ। उन राबतन में ईरानी पासवान इनकलाब का राबता भी शामिल है। ईरान अपने हुरमुज में 4 आयल टैंकर्स वापस मोकले छा। बरतानवी अखबार मूजिब जहाजन पासदान इनकलाब के हिदायत से रस्त तब्दील किया। उनमान जहाजन से आपसी बहरी रस्त दिनों हो। ओमान के दखण ओभर सार इलाके में कार्गो जहाज के हमले जहा इतला।

अपने हुरमस के कई एक मुल्क की मिल्कियत तौर कबूल न कदासी खिते में चटादार अमन के यकीनी बढ़ाई अमरीकी परदे वजीर मार्को रूबियो है तो खिते में इतिहादन की तरक्की खुशहाली चाहूँ था टीन टेक्निकल टीमू बीहर ईरान से एटमी प्रोग्राम पाबंदन बाबत गालू क्यों।

पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमुनीदड़ मुल्क बणजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाकिस्तान खां कमु वरितो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कमु कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तक़ाम तरफ़ वधी रहियो आहे।

संग्राम की मासूम प्रिया कुमारी के जमीन गी वही आसमान खाई वो पंज साल अग संग्राम में यो में आशूर थे सभी ग्राइंद गुम चल मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए हुकूमत जो एक भी वायदो वफा न थो बिन सूबाई हुकूमत दौरान चार आईजी तब्दील थे सभी सखड़ियों दावाओं छला आसरा दीदा रहा आमली तौर से कुछ भी न थो रोड़ी मामी इंडिया से गलाइंदे सूबाई गुरु वजीर जियाउल हुसैन लंजार चो तो प्रिया कुमारी जैन दाड़ेल वटण जो इतला हो वो मारजी वो है कचे में ऑपरेशन जारी है पर अं ती प्रिया कुमारी को पतो ना पी सको कड़ी हुकूमत चाहिंदी तो कैंजो बार हो वो बाजियाब न थे सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी 34 अरब 74 करोड़ रुपये के 15 तरक्याती मनसूबन की मंजूरी दई छी इस्लामाबाद में रिथाबंदी वाले वफाकी वजीर हसन इकबाल चदरा थे CDWJP के इजलास में मनसूबा मंजूर पधराई मूजिब 431 अरब 2 करोड़ 20 लख रुपये जहा नव मनसूबा मंजूरी ला इकनिक ला मोकलिया वह थरपाकर में 11 करोड़ 21 लख रुपये के खर्च इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिले हेडक्वार्टर के दावत की मंजूरी 278 अरब 61 करोड़ 85 लख रुपये के खर्च से ML3 रेलवे अपग्रेडेशन मनसूबे की किनिक सिफारिश रोड़ी सिबी कोयटा टापटाम सेक्शन से 996 किलोमीटर रेलवे पटड़ी की अपग्रेडेशन कई वी 11 नयू रेलवे स्टेशन तामीर थन्दूँ

0: ऐं यूरोप में लिंग साड़ींदड़ गर्मी आवाम जो जीअण ॾुखियो बणाए छॾियो। स्पेन में 42 सेंटीग्रेड गर्मी सबबु रुगो 4 ॾींहनि दौरान 212 माण्हू हयातियूं विञाए वेठा। फ्रांस में 80 सालनि खां पहिरियों भेरो पारो 44 डिग्री सेंटीग्रेड ते पहुतो। फोर्तुनि जो अंगु 50 खां वधी वियो। लंडन ऐं साउथ ईस्ट इंग्लैंड में शदीद गर्मी जी रेड वार्निंग में वाद। वॾे ख़बरू इदारे मूजिबि गर्मी सबबु यूरोप जे अक्सर मुल्कनि में इस्पतालूं मरीज़नि सां सतजी वियूं। कहर जी गर्मी सबबु इस्पतालनि मशीनरी बि कम करणु छॾे वई आहे।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मुहर्रम मोटी आयो आया तान इमाम मदीने जा जाम।

0: रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो खौफ खुदा में रोएण दोज़ख़ खान निजात जो ज़रियो आहे
0: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे ज़रो नाहे यज़ीद खे ये इश्क जो आज़ार हुसैन जो करार असल इमामन सी।

0: एक बार मिल
1: जावे।
2: सख्ती शहादत जी निसोर ओई नाज, सख्ती शहादत जी निसोर ओई नाज, रिंद परूड़ी ने रा।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसण जो करार असल इमामन सी।

0: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजार हुसन जो करार असल इमामन सी
1: बढ़े जोकर के वो।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: जो इंतजाम सख्त मातमी जलूस ने रूट से मोबाइल फोन सर्विस बंद मातमी जलूस ने रस्तन से सबीलन न्याज लंगर जो बेहतमाम

हैदराबाद जामशोरो दादू मठियारी टंडो अलैयार टंडो मोहम्मद खान बदीन सजावल छठे जिले शहरों में अर्दारी जारी मुख्तलिफ़ शहर में एकतल मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवाना सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त पुलिस सां गॾु रेंजर जा जवान बि मुक़रर थियल

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शक्ति शहादत जी निसोरोई नाज, शक्ति शहादत जी निसोरोई नाज, रिंद परूरी नराज कजिए करबला।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसण जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा पुसण जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसण जो करार असल इमामन सी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जलूस मंजिल तरफ रवाना दवा सिंध बलूचिस्तान केपीए पंजाब समेत समूरे मुल्क में जलूस ने रस्तों से सिक्योरिटी सख्त मोबाइल सर्विस पर बंद। हैदराबाद आई 30 जिले के नंढन वन शहर में आजादारी जारी मुख्तलिफ शहर में निकल मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवाना हुआ सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त पुलिस अंगर रेंजर के जवान भी मुकर थे। शहीद वजीराबाद ए मीरपुर खाल डिवीजन में करबला के शहीदन के भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी नवाब शाह मुशरफ रोज ए सांगर जिले के नंढन वन शहर में आजादारी मीरपुर खास उमरकोट थरपारकर में बरामद थियल मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवा दवा सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई सख्त। सखर ए लाड़कानी डिवीजन में भी आजादारी जारी सखर खैरपुर घोटकी जिले के नंढन शहर में बात जारी रोड रस्तन से सबिलू भी लगल लाड़कानू कंबर शिदादकोट जगमबाद कश्मोर कनकोट ए शिकारपुर जिले के नंढन शहर में आजादारी जारी सिक्योरिटी सख्त।

पनियाकल वेझो औरत मुबैना तौर से कार के इल्ज़ाम हेठ कतल लाश दरिया में लोढ़ियों पो कच्चे वारे इलाके में नवीदा धी फेरोज मैर के मुबैना तौर से कार के इल्ज़ाम हेठ कतल किया वो पुलिस सुना तो वाकई जाँच शुरू कर छी है जाँच बाद ही हकीकतों सामू इंदियों।

0: डेढ़ माह अग्वाचल निंगरी उजाला परवीन सोलंगी बाजियाब नथी सैदल मैसर पाड़ी माह अग्वाचल निंगरी प्रेत नियन खां गुम वारस परेशानी जो शिकार मुगवी निंगरी अची वालद शमस्तीन सोलंगी चौणा त पुलिस उजाला परवीन की बाजियाबी लाइ का बि दिलचस्पी नथी वठे धीअ खे बाजियाब कराए वञे। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबब तबाही थियल वधीक ख़ौफ़नाक थी वई। मलबे जो ढेर बणियल इमारतुनि मां माण्हुनि खे करण वारो ऑपरेशन जारी। वेनेज़ुएला जी हुकूमत ज़लज़ले सबब फौतियुनि जो अंग वधी 235 थियण जी तस्दीक करे छॾी। हज़ारे ज़ख़्मी इमदादी कारकुननि पारां मलबे हेठां दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण जूं कोशिशूं जारी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सख़्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे ज़रो नाहे यज़ीद खे इहो इश्क जो आज़ार حسن جو قرار اصل امام منسی
4: آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے

0: अब रेत पर
1: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज रिंद पर उड़ी निराज।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: कोर्ट के जिले से नंदन वर्धन शहरन में मातम जारी रोडन रस्तन ते सभी लू बिलग लाड़कानो कंबर शिदात कोट जगमबाद कश्मोर कंद कोट शिकारपुर जिले के नंदन वर्धन शहरन में अदादारी जारी सिक्योरिटी सख्त।

इमाम हुसैन अल इस्लाम ऐं जान निसारनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशह हक़ ऐं सच सां गॾु बीहणु घुरिजे। कराचीअ में मरकज़ी मातमी जुलूस में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुहरम जे मौक़े ते को ख़ासि ख़तरो नाहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहरम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया आहिनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ बि पुलिस कोशिशूं करे पई, पर अञा ताईं बाज़ियाबी नाहे थी। डिजी रेंजर सिंध जो कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस जो दौरो सिक्योरिटी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो वियो। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ रेंजर्स कंट्रोल रूम जो दौरो करे सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। अमलदारनि डिजी रेंजर्स खे मरकज़ी जुलूस जी सिक्योरिटी बाबति आगाही ॾिनी। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो समूरे सिंध में अटकल 7,000 रेंजर्स अहलकार ऐं आफ़िसर मुक़ररु आहिनि। डिजी रेंजर्स पारां सूबे में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बहितर करण जी हिदायत। पाकिस्तान जीअं दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी। इराकी शहर करबला में हज़ारे आज़ादारनि जी आमद। करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी। ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बंग्लादेश ऐं भारत में बि आज़ादारी जो सिलसिलो जारी। करबला में इस्लाम लाइ लाज़वाल क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अल इस्लाम सां साथियुनि खे भेटा पेश।

ईरान जंग में पाकिस्तान जो किरदार क़यामत ताईं यादि रखियो वेंदो। पाकिस्तान ईरान ऐं अमरीका में ठाह कराए मुस्लिम मुल्कनि ॾांहुं आॾो सुरखरू थियो। दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान जो किरदार यादि रखियो वेंदो। मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहाद मुतर थी रहियो आहे। ईरान फ़लस्तीन ऐं लबनान जी अवाम जी क़ुर्बानीनि रंग लाथो आहे। फ़लस्तीननि जी आज़ादी वारो वक़्तु बि परे नाहे। लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिलु कंदो। ईरानी फ़ौज आबन हुरमज मां गुज़रण जी कोशिशि कंदड़ चार आयल टैंकर्स खे मोटाए छॾियो। आबन हुरमज में ओमान जे सामूरी इलाइक़े में कार्गो जहाज ते बि हमिलो। ईरानी पासदान इनकलाब चयो आहे त बहिरी जहाज रुगो ईरान जे मंज़ूर थियल गुज़रगाहनि मां ई गुज़री सघनि था। अमरीका ईरान जी सिधी रीत फ़ौजी राबता क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। ॿिन्ही मुल्कनि जी फ़ौजदारी अमलदारनि जी मुलाक़ात ईंदड़ हफ़्ते कतरी शहर दुआ में थींदी। अमरीकी नायब सदर जीडी बिल्स चयो आहे त ईरानी फ़ौज सां गॾु सिधी रीत राबता चैनल क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ईरानी ऐं अमरीकी फ़ौजी अख़्तियारियूं दुआ में मुलाक़ात कंदियूं।

0: सदर आसिफ अली ज़रदारी ने माली साल जी वफाकी बजट जी मंजूरी ॾेई छॾी। पार्लियामेंट में मंजूर थियल फिनांस 2026-27 जी सदर मंजूरी ॾिनी। बलीर जे इलाके खोखरापार जे हिकु घर मां माउ ऐं धीअ जा फाउ लॻल लाशत। पुलिस मूजिबि औरत जी सुञाणप सबा ज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं इंग्लिश सुञाणप नबिया धीउ मोहम्मद हनीफ़ तौरु थी आहे। लाश इस्पताल मुंतकिल कया विया। वधीक जांच जारी आहे। पनवाकिल वेझो औरत मुबैना तौर ते कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल। लाश दरिया में रोड़ियो पियो। कचे वारे इलाइक़े में नवीदा धीउ फिरोज़ महर खे मुबैना तौर ते कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो वियो। पुलिस चवण आहे त वाकिए जी जांच शुरू कई वई आहे। जांच बाद ई हक़ीक़तूं साम्हूं ईंदियूं। मेहड़ मां अगवाचल निंगरी उजाला परवीन सोलंगी बाज़ियाब न थी। सेदर मैसर पाड़े मां अगवाचल निंगरी 73 ॾींहनि खां गुम। वारस परेशाननि जो शिकार। मुखी निंगरीअ जी बाज़ियाबीअ लाइ वल शमसदीन सोलंगी चवण आहे त पुलिस उजाला परवीन जी बाज़ियाबी लाइ का बि दिलचस्पी नथी वठे। धीउ खे बाज़ियाब कराए वञे। आमिन ज़िला में ज़लज़ले सबबु तबाह थियल वधीक ख़ौफ़नाक तबाही थी वई। मलबे जे ढेर बणियल इमारतुनि मां माण्हुनि खे कढण वारो ऑपरेशन जारी। विंदुला जी हुकूमत ज़लज़ले सबबु फौतनि जो अंग वधी 265 थियण जी तसदीक करे छॾी। हज़ारे ज़ख़्मी इमदादी कारकुननि पारां मलबे हेठां दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण जूं कोशिशूं जारी।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज। सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज। रिंद परूड़ी निराज।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के यो इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के यो इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लाम जी सिर बुलंदी लाइ करबला जे मैदान में लाजवाल कुर्बानी ॾींदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम जान सरन जी याद में सिंध समेत समूरे मुल्क में आज़ादारी जारी। कराची में मरकज़ी जलूस नशर पाक खां बरामद रवायती रस्म खां थींदो। हुसैनिया ईरानिया खारदार पहुची नहर थींदो। इस्लामाबाद लाहौर पिशावर कोयटा गिरगित बल्तिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर में निकितल मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। सिंध समेत बलूचिस्तान KP ऐं पंजाब समेत समूरे मुल्क में सिक्योरिटी सख़्त, मोबाइल सर्विस बि बंदि। हैदराबाद में कदमगाह तां बरामद थियल मातमी जुलूस जो रवायती रस्म ते सफ़र जारी। करबला दादन शाह जे पिड़ ते पहुची नहर थींदो। जामशेरो शहर में ज़िले जे नंढनि नंढनि शहरनि में आज़ादारी जारी। दादू शहर समेत ज़िले जे समूरनि तालुकनि में मातम ऐं मटियारी शहर समेत ज़िले जे नंढनि नंढनि शहरनि में मातम टंडो अलायार समेत ज़िले जे नंढनि नंढनि शहरनि में ॻोठनि में आज़ादारी। शहीद वीरेंद्राबाद ऐं बीरपुर खालसी विज़न में शहीदनि खे भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। नवाबशाह शहर समेत ज़िले जे नंढनि नंढनि शहरनि में निकितल मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। नुसरत फिरोज़ शहर समेत ज़िले जे नंढनि नंढनि शहरनि में आज़ादारी जारी। सांगड़ शहर समेत ज़िले जे नंढनि नंढनि शहरनि में गमे हुसैन जा मंज़र या हुसैन जूं सदाऊं। मीरपुर खालस शहर नंढनि नंढनि इलाइक़नि में निकितल मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। उमरकोट शहर समेत ज़िले जे नंढनि नंढनि शहरनि में आज़ादारी जारी। थरपारकर जे शहर मिठी ऐं ॿिनि इलाइक़नि में करबला शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातम जारी। रोडनि रस्तनि ते सभिनी लॻल सिक्योरिटी जा बि सख़्तु इंतिज़ाम।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सख़्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे ज़रो नाहे यज़ीद खे इहो इश्क जो आज़ार हुसण जो करार असुल इमामन सी।

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

इस्लाम जी सरबुलंदीअ लाइ करबला जे मैदान में लाज़वाल क़ुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जानसारनि जी यादि में सिंध समेत समूरे मुल्क में आज़ादारी जारी। कराचीअ में मरकज़ी जुलूस नशर पाक खां बरामद, रवायती रस्तनि खां थींदो। हुसैनिया ऐं अनिया खारदार फ़ौजी नहर थींदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह, गवर्नर निहाल हाशमी ऐं डी जी रेंजर जुलूस जो दौरो करे सिक्योरिटीअ जो जाइज़ो वरितो। इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में निकितल मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। सिंध समेत बलूचिस्तान, के पी, पंजाब समेत समूरे मुल्क में सिक्योरिटी सख़्त, मोबाइल सर्विस बंद। हैदराबाद में कदमगाह तां बरामद थियल मातमी जुलूस जी रवायती रस्तनि ते सफ़र जारी। करबला दादन शाह जी पिड़ ते पहुची नहर थींदो। जापशोर शहर में ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में अदादारी जारी। दादू शहर समेत ज़िले जे समूरनि तालुकनि ऐं मातम मटियारी शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम, रंडोलिया शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि ॻोठनि में अदादारी। टंडो मोहम्मद ख़ान शहर ऐं ॿिनि इलाक़नि में शहीद बेनज़ीराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि डिवीज़न में बि करबला शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिलसिलो जारी। नवाबशाह शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में निकितल मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। नशर फिरोज़ शहर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी। सांगर शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में गमे हुसैन जा मंज़र, या हुसैन जूं सदाऊं। मीरपुर ख़ासि शहर ऐं नंढनि वॾनि इलाइक़नि में निकितल मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। उमरकोट शहर समेत ज़िले जे नंढनि शहरनि में आज़ादारी जारी। थरपारकर जे शहर मिठी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में करबला शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातम जारी। रोडनि ऐं रस्तनि ते सभिनी लॻल सिक्योरिटी जा बि सख़्तु इंतज़ाम। सकर ऐं लाड़कानी डिवीज़न में बि आज़ादारी जारी। रोड़ीअ में नवनि ॾहनि वारे तारीख़ी मातम जुलूस हैदर शाहकानी ते राति तरसण बाद ॿीहर बरामद। जुलूस रवाजी रस्तनि तां थींदो। शाम जो शहदाए कब्रस्तान वटि नहर थींदो। सकर शहर समेत ज़िले जे ॿिनि इलाइक़नि में बि आज़ादारी जारी। खैरपुर शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। घोटकी शहर ज़िले नंढनि वॾनि शहरनि में मातम जारी। रोडनि रस्तनि ते सभिनी लॻल लाड़काणो शहर समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि ऐं ॻोठनि में आज़ादारी जारी। कंबर, शिदादकोट शहरनि समेत नंढनि वॾनि शहरनि में मातम जारी। जेकमबाद शहर समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि में मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। कश्मूर ऐं कंदकोट शहरनि समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि ऐं ॻोठनि में आज़ादारी। शिकारपुर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि नंढनि वॾनि शहरनि में बि मातम, सिक्योरिटी सख़्तु। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं जानसरनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशह हक़ ऐं सच सां गॾु बीहणु घुरिजे। कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुहरम जे मौक़े ते को ख़ासि ख़तरो न आहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहरम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया विया आहिनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस वरितो वियो। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज रेंजर्स कंट्रोल रूम जो बि दौरो करे सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो। अमलदारनि डी जी रेंजर्स खे मर्कज़ी ज़रूरी सिक्योरिटी बाबति आगाही ॾिनी। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त समूरी सिंध में अटकल 7,000 रेंजर्स अहलकार ऐं ऑफिसर मुक़ररु आहिनि। डी जी रेंजर्स पारां सूबे में सिक्योरिटी इंतज़ाम बहितर कया विया आहिनि। सिंध में मोहरम आराम दौरान सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे त कंहिं बि क़िस्म जो अणमुंदड़ वाक़ियो न थिए। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में मातमी जुलूस जो दौरो करण बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई गुरू वज़ीर ज़ियाउल हुसैन लंजार चयो त सिंध पुलिस जो पघारूं पंजाब पुलिस खां वधीक आहिनि। सिंध जे समूरनि डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स खे सेफ सिटी बणायो वेंदो। सूबाई काबीना में तब्दीली वारियूं ख़बरूं अफ़वाह आहिनि। पार्टी क़यादत चाहे त तब्दीली बि करे सघे थी। MQM अॼु MPA पारां एवानल धमकीअ जी जाच जारी आहे। जाच रिपोर्ट स्पीकर वटि पेश करण बाद कार्रवाई थींदी। पाकिस्तान जी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में अदादारी। इराकी शहर करबला में हज़ारे अदादारनि जी आमद। करबला जे शहीदनि जी यादि में अदादारी। ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बंग्लादेश ऐं भारत में बि अदादारी जो सिलसिलो जारी। करबला में इस्लाम लाइ लाल क़ुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सां सातनि खे भेटा पेश।

0: आयविन ज़िला में ज़लज़ले सबबु थियल तबाही वरी के ख़ौफ़नाक थी वई। मलबे जो ढेर बणियल इमारतुनि मां माण्हुनि खे कढण वारो ऑपरेशन जारी। वेनेज़ुएला जी हुकूमत ज़लज़ले सबबु पोतनि जो अंग वधी 235 थियण जी तसदीक करे छॾी। हज़ारे ज़ख़्मी इमदादी कारकुननि पारां मलबे हेठां दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण जूं कोशिशूं जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिली अकीदत तो एहतराम के साथ हदिया अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। मुस्तफा नूर हैं, उस नूर में शामिल हैं हुसैन, इल्म सरकार हैं, तालीम का हासिल हैं हुसैन, जिसमें धड़कन दिल जहरा है वो दिल है हुसैन, एक लम्हा ही सही सदियों के मकाबिल हैं हुसैन, नाम इस्लाम का इस नाम से ताबिंदा है, ऐ अजल देख हुसैन इब्ने अली जिंदा है।

0: इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी ईंदड़ महीने ईरान वञण जा इम्कान। शहीद आयतुल्ला खामनेई जे जनाज़े नमाज में शिरकत कंदो। ज़रियन जो चवण आहे त वज़ीर आज़म जे ईरानी दौरे के हतमी शकल डि॒नी पई वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गॾु आला सतही वफ़्द बि हूंदो। शहीद आयतुल्ला खामनेई जी तकफ़ीन ईंदड़ महीने कई वेंदी। ईरान जंग में पाकिस्तान जो किरदार क़यामत ताईं यादि रखियो वेंदो। पाकिस्तान ईरान ऐं अमरीका में ठाह कराए मुस्लिम मुल्कनि ॾाढो सुरखरू थियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान जो किरदार यादि रखियो वेंदो। मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहाद नज़र अची रहियो आहे। ईरान फ़लस्तीन ऐं लबनान जी अवाम जी क़ुर्बानीनि रंग लाथो आहे। फ़लस्तीन जी आज़ादी वारो वक़्त बि परे न आहे। लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिल कंदो। ईरानी फ़ौज आपना हुर्मुस मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ चार ऑयल टैंकर्स खे मोटाए छॾियो। आपना हुर्मुस में अमान जे सामूंडी इलाइक़े में कार्गो जहाज़ ते बि हमिलो। ईरानी पासदारनि इंकलाब चयो आहे त बहिरी जहाज़ रुॻो ईरान जी मंज़ूर थियल गुज़रगाहनि मां ई गुज़री सघनि था। अमरीका ऐं ईरान जो सिधी रीति फ़ौजी राब्ता क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो। ॿिन्ही मुल्कनि जे फ़ौजी अमलदारनि जी मुलाक़ात ईंदड़ हफ़्ते कतरी शहर दोहा में थींदी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त ईरानी फ़ौज सां सिधी रीति राब्ता चैनल क़ाइमु करण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ईरानी ऐं अमरीकी फ़ौजी अख़्तियारियूं दोहा में मुलाक़ात कंदियूं। सदर आसिफ अली सरदारी नए माली साल की वफाकी बजट की मंजूरी दई छी। पार्लियामेंट में मंजूर थियल फाइनेंस 2026-27 की सदर मंजूरी दिनी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दिली अकीदत तो एहतराम के साथ हदीए अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कूफियो शामी।
2: आमा बुधी रया आयो जीए एफएम नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: में लाजवाल कुर्बानी डींदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जान निसारनि जी यादि में सिंध समेत समूरे मुल्क में आज़ादारी जारी। कराची में योम आशूर जो मर्कज़ी जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुची नहर थी वियो। वॾे वज़ीर माद अली शाह, गवर्नर नियाल हाशमी ऐं डीजी रेंजर्स जुलूस जो दौरो करे सिक्योरिटी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो। इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर में बि योम आशूर जा मातमी जुलूस। सिंध, बलोचिस्तान, केपी ऐं पंजाब समेत मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मोबाइल फोन सर्विस बि बंदि। हैदराबाद में कदम का बोला अली तां बरामद थियल मातमी जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। पंहिंजे आख़िरी मंज़िल करबला दादन शाह जे पिड़ ते नेर थी वियो। जाम शोरो ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में ज़ादारी। दादू शहर समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि में मातम। मटियारी, टंडोलयार ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान ज़िलनि में बि योम आशूर ते हर तरफ़ यावसेन जूं सदाऊं बुलंद। पदीन, टट्टो ऐं सजावल ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। सबीलनि ऐं न्यास नगर जो बि बंदोबस्तु कयो वियो।

सखर ऐं लाड़खाणे डिवीजन में बि योम आशूर जा मातमी जुलूस कढिया विया। रोहड़ी में नव ढालनि वारो तारीख़ी मातमी जुलूस पंहिंजे आख़िरी मंज़िल शोधा कब्रिस्तान वटि नहर थी वियो। सखर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि इलाइक़नि में बि आज़ादारी, खैरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। लाड़काणो ऐं कंबर शहदादपुर ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम, जेका बाद कश्मोर, कंदकोट ऐं शिकारपुर ज़िलनि में बि योम आशूर अक़ीदत ऐं एतराम सां मल्हायो पियो वञे सिक्योरिटी सां। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं जान सरनि जी अज़ीम क़ुर्बानी इस्लाम जो सरमायो आहे। सभिनी खे हमेशह हक़ ऐं सच सां गॾु बीहण घुर्जे। कराची में मर्कज़ी मातमी जुलूस में ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर मुअत्तली शाह चयो त मुहरम जे मौक़े ते को ख़ास ख़तरो नाहे, पर पाकिस्तान जा दुश्मन ताड़ में रहंदा आहिनि। मुहरम जी सिक्योरिटी लाइ 60,000 अहलकार ऐं अमलदार मुक़ररु कया आहिनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ बि पुलिस कोशिशूं करे रही आहे, पर अञा बाज़ियाब नाहे थी। डीजी रेंजर सिंध जो कराची में मर्कज़ी मातमी जुलूस जो दौरो, सिक्योरिटी इंतज़ाम जो जाइज़ो वरितो। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेस रेंजर्स कंट्रोल रूम जो भी दौरो करे सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। अमलदारनि डीजी रेंजर्स खे मर्कज़ी जुलूस जी सिक्योरिटी बाबति आगाही ॾिनी। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त समूरी सिंध में अटकल 7,000 रेंजर्स अहलकार ऐं आफिसर मुक़ररु आहिनि। डीजी रेंजर्स पारां सूबे में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बहितर करण जी हिदायत। सिंध में मोहरमुल हराम दौरान सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। हुकूमत जी पहिरीं तर्ज़ी आहे त कंहिं बि क़िस्म जो अणवणंदड़ वाकियो न थिए। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में मातमी जुलूस जो दौरो करण बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाल हसन नज़ार चयो त सिंध पुलिस जूं पघारूं पंजाब पुलिस खां वधीक आहिनि। सिंध जे समूरनि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स खे सेफ सिटी बणायो वेंदो। सूबाई काबीना में तब्दीली वारियूं ख़बरूं अफ़वाह आहिनि। पार्टी क़यादत चाहे थी त तब्दीली बि करे सघे थी। एम क्यू एम जे एम पी ए पारां ऐवान में ॾिनल धमकी जी जाच जारी आहे। जाच रिपोर्ट स्पीकर वटि पेश करण बाद कार्रवाई थींदी। पाकिस्तान जी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी। इराकी शहर करबला में लखें आज़ादार पहुतल। ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बंग्लादेश ऐं भारत में बि योम आशूर ते मातमी जुलूस बरामद थिया। करबला में इस्लाम लाइ लाज़वाल क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि साथियुनि खे भेटा पेश।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो ईंदड़ महीने ईरान वञण जा इम्कान। शहीद आयतुल्ला ख़ामेनेई जी जनाज़े नमाज़ में शिरकत कंदो। ज़रीन जो चवण आहे त वज़ीर आज़म जे ईरानी दौरे खे हतमी शकल ॾिनी पई वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां गॾु आला सतही वफ़द बि हूंदो। शहीद आयतुल्ला ख़ामेनेई जी तदफ़ीन ईंदड़ महीने कई वेंदी। ईरान जंग में पाकिस्तान जो किरदार क़यामत ताईं यादि रखियो वेंदो। पाकिस्तान ईरान ऐं अमरीका में ठाह कराए मुस्लिम मुल्कनि ॾाढो सुरख़रू थियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान जो किरदार यादि रखियो वेंदो। मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहाद नज़र अची रहियो आहे। ईरान फ़लस्तीन ऐं लबनान जी अवाम जी क़ुर्बानीनि रंग लाथो आहे। फ़लस्तीन जी आज़ादी वारो वक़्तु बि परे नाहे। लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिलु कंदो। ईरानी फ़ौज आबना हुर्मुस मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ चार रॉयल टैंकर्स खे मोटाए छॾियो। आबना हुर्मुस में अमान जे सामूंडी इलाइक़े में कार्गो जहाज़ ते बि हमिलो। ईरानी पासदारनि इनकलाब चयो आहे त बहरी जहाज़ रुगो ईरान जी मंज़ूर थियल गुज़रगाह मां ई गुज़री सघनि था। सदर आसिफ अली सरदारी नए माली साल जी वफ़ाक़ी बजट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पार्लियामेंट मां मंज़ूर थियल फाइनांस 2026-27 जी सदर मंज़ूरी ॾिनी।

0: ॿुधाइनि किथे आहे प्रिया, माना ख़बर त सॼी अथनि प्रिया किथे आहे, माना रिकवर नथी मिले असांखे, पंहिंजी नियाणी मिले असांखे कहिड़ी ख़बर कंहिं वटि आहे किथे आहे। अञा ताईं असां आपरे में वेठा हूंदा, असांजी नियाणी ईंदी ऐं कॾहिं ईंदी, रियासत जी ज़िमेवारी आहे असांखे नियाणी रिकवर कराए ॾियनि।
1: अॼु खां 5 साल अॻु असांजी प्रिया संगरार जे मौला अली जे पेड़ में सबील हलाईंदे उतां मिस थी वई आहे। अॼु बि उहे ॾींहं आहिनि, उहे अखियुनि में गोरा आहिनि, उहे माउ पीउ प्रिया जा राजकुमार ऐं उनजी संदी घरवारी अॼु बि उहे वाटू निहारे थी, मौला अली खे ॿाॾाए थी त हे मौला अली, जंहिं पिण मां मुंहिंजी नियाणी वई आहे उहा असांजी नियाणी इन्हीअ पिण ताईं मिलंदी, अॼु बि हुननि जो इहो ई यकीन आहे।
2: सखर जे इलाइक़े संगरार मां 5 साल अॻु योम आशूर ते सपील विराइण दौरान अगवा थियल मौसम प्रिया कुमारी जो को ॾस पतो न पियो। सिंध हुकूमत ऐं सिंध पुलिस पहिरें ॾींहं खां अॼु ताईं वारिसनि खे रुगो ठल आसरा ॾींदी रहे ऐं सखड़ियूं दवाऊं कंदे नज़र आई। 5 सालनि दौरान सिंध में 2 हुकूमतूं आयूं, 4 आईजी तब्दील थिया, केतिरा ई भेरा पुलिस प्रिया जे वेझो हुअण जी दावा कई, पर हिकु बि ॻाल्हि सच साबित न थिए। प्रिया कुमारी जी बासियाबी लाइ शहदादकोट, पीरपुर पटोरो ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज। मलीर जे इलाइक़े कुकरापार जे हिकु घर मां माउ ऐं धीउ जो पाओ लॻल लाश रहे। पुलिस मौजी बोर जी सुञाणप सबा ज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं नींगरी जी सुञाणप नबीहा धीउ मोहम्मद हनीफ़ तौर थी आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾिया आहिनि, वधीक जांच करे रहिया आहिनि। बदीन वेझो पुराणी तकरार सां अतिरोट शख़्स ग्वाड़ियुनि जा वार करे क़तल, जवाबदार फरार। कोट कुरम खान खोसो में जवाबदार बनीअ ते सुतल मोहम्मद इस्माइल खोसो खे कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो। वारिसनि जो चवण आहे त हुसैन बख़्श खोसो दौर सां पुराणो तकरार हलंदड़ हो, जंहिं तां वाकियो पेश आयो आहे। पुलिस वाकिए वारे हंधु पहुची जांच शुरू करे छॾी। शकी जवाबदारनि जूं कुझु औरतूं गिरफ़्तार, पने आखिर वेझो औरत मुबैना तौर कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल। लाश दरिया में लोड़ियो वियो। कच्चे वारे इलाइक़े में नवीदा धीउ फिरोज़ मेहर खे मुबैना तौर कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो वियो। पुलिस जो चवण आहे त वाकिए जी जांच शुरू करे छॾी आहे, जांच बाद ई हक़ीक़तूं साम्हूं ईंदियूं। ठंडो मोहम्मद खान भरिसां घर जी भित किरण सबबि नींगर दॿजी पहुत। घोट जमू बाग में भित किरण सबबि 6 सालनि जो मासूम नींगर रिज़वान लखारी दॿजी पहुत थी वियो। ऐं वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबबि थियल तबाही वधीक ख़ौफ़नाक थी वई। मलबे जो ढेर बणियल इमारतनि मां माण्हुनि खे कढण वारो ऑपरेशन जारी। वेनेज़ुएला जी हुकूमत ज़लज़ले सबबि पहुतियुनि जंग वधी 579 थी वियो। 2980 ज़ख़्मी, किरियल इमारतनि जे मलबे हेठां दॿियल हज़ारे माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ इमदादी कार्रवाइयुनि जो सिलसिलो जारी।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो, हरगिज उन्हनि माण्हुनि मंझां न थींजो जेके ॿियनि जी गुनाहनि ते ख़ौफ़ज़दा ऐं पंहिंजे गुनाहनि खां ग़ाफ़िल हूंदा आहिनि।
5: हदीए अशार बहुज़ूर इमाम आली मक़ाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, पूछते हो किस लिए हमसे कि क्या है करबला, अब हमारी इब्तिदा और इंतहा है करबला। ऐ वफादारो न भटको, देखो सूए करबला, हश्र तक एक साया ए शजरो वफा है करबला।

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
2: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।

0: इमाम हुसैन अलैहि सलाम जन फरमायो, सब का वडो माफ करण वारो उ आहे जेको ताकत जे बावजूद माफ करे छडे।
1: ऐ करबला की खाक, इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल।
2: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
3: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बड़े वजीर मुआद अली शाह, गवर्नर निहाल हाशमी और डीजी रेंजर सुरूस जो दौरों करे सिक्योरिटी इंतजाम जो जायजो वरतो। इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी योम आशूर जा मातमी जुलूस। सिंध, बलोचिस्तान, केपी और पंजाब समेत मुल्क के नंढन वडन शहरों में सिक्योरिटी जा इंतजाम सख्त किया गया। मुख्तलिफ इलाकन में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद।

हैदराबाद में कदम का मौला अली था बरामद थियल मातमी जुलूस रिवायती रस्म का थींदो पंहिंजे आख़िरी मंज़िल करबला दादन शाह जे पिण ते नर थी वियो। जाम शोरो जिले जे नंढनि वॾनि शहरनि में ज़ादारी दादू शहर समेत जिले जे समूरनि शहरनि में मातम मटियारी टंडोलयार ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान ज़िलनि में बि योम आशूर ते हर तरफ़ याओ सेन जूं सदाऊं। बदीन चट्टो ऐं सजावल ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। सबीलनि ऐं न्यास नगर जो बि बंदोबस्तु कयो वियो।

सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन में बि योम आशूर जा मातमी जुलूस कढिया विया। रोहड़ी में नव टालनि वारो तारीख़ी मातम जुलूस पंहिंजे आख़िरी मंज़िल शोदा कब्रस्तान वटि नर थी वियो। सखर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि इलाइक़नि में बि आज़ादारी। खैरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। लाड़काणो ऐं कंबर शरदपुर ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम। जेकाबाद, कश्मोर, कंदकोट ऐं शिकारपुर ज़िलनि में बि योम आशूर अक़ीदत ऐं एतराम सां मल्हायो वियो सिक्योरिटी सां।

पाकिस्तान जी दुनिया के बेन मुल्कन में भी करबला के शहीदन की याद में आजादारी। इराकी शहर करबला में लखे आजादार पौतल। ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बांग्लादेश और भारत में भी योम आशूर से मातमी जुलूस बरामद किया। करबला में इस्लाम लाए लाजवाल कुर्बानी दीदड़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और संदस साथियों के पेटा पेश।

ईरानी फौज आपने हरमुज पा घुसण की कोशिश कर चार आयल टैंकर्स के मोटाए छो आपने हरमुज में अमान जी सामुंडी इलाके में कार्गो जहाज से भी हमलो ईरानी पासा ने इनकलाब है तो पहली जहाज रुगो ईरान के मंजूर थियल गुजरगान में ही गुजरी सकन था आपने हरमुज से ईरान के कंट्रोल सबब इस्तेकाम बरकरार है खिते जहा नंढा मुल्क मखसूस खातरियन से धोखो न खाएन अड़ियन मुल्क जो वजूद वड़ियन ताकतन की सरप्रस्ती के कर ही हों ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार जो बयान अली अकबर विलायती डिगे ईरानी कंट्रोल से खिते के मुल्क जो इस्तेकाम बरकरार है ओलह खिते के बरबरीत फुरलुट का सिवा कुछ ना दिनों खिते की नई सखबंदी में इन नंढन मुल्क की का भी हैसियत ना है सदर आसिफ अली सरतारी नए माली साल की वफाकी बजट की मंजूरी दई छी पार्लियामेंट में मंजूर थियल फाइनेंस 2026-27 की सदर मंजूरी दिनी

0: ॿुधाइनि किथे आहे प्रिया, माना ख़बर त सॼी अथनि प्रिया किथे आहे, माना रिकवर नथी मिले असांखे, पंहिंजी नियाणी मिले असांखे कहिड़ी ख़बर कीअं वटि आहे किथे आहे। अञा ताईं असां आफ़रे में वेठा हूंदा, असांजी नियाणी ईंदी ऐं कॾहिं ईंदी, रियासत जी ज़िमेवारी आहे असांखे नियाणी रिकवर कराए ॾियनि।
1: अॼु खां 5 साल अॻु असांजी प्रिया संगरार जे मौला अली जे पेड़ में सबील हलाईंदे उतां मिस थी वई आहे। अॼु बि उहे ॾींहं आहिनि, उहे अखियुनि में गोरा आहिनि, उहे माउ पीउ प्रिया जा राजकुमार ऐं उन जी संदी घरवारी, अॼु बि उहे वाटू निहारे थी, मौला अली खे ॿाॾाए थी त हे मौला अली, जंहिं पेड़ मां मुंहिंजी नियाणी वई आहे उहा असांजी नियाणी इन पिण ताईं मिलंदी, अॼु बि हुननि जो इहो ई यकीन आहे।
2: सखर जे इलाइक़े संगरार मां 5 साल अॻु योम आशूर ते सबील विहण दौरान अगवा थियल मासूम प्रिया कुमारी जो को ॾस पतो न पियो। सिंध हुकूमत ऐं सिंध पुलिस पहिरीं ॾींहं खां अॼु ताईं वारिसनि खे ॻोठल आसरा ॾींदी रही ऐं सखणियूं दवाऊं कंदे नज़र आई। 5 सालनि दौरान सिंध में 2 हुकूमतूं आयूं, 4 आईजीस तब्दील थिया, केतिरा ई भेरा पुलिस प्रिया जे वेझो हुअण जी दावा कई पर हिकु बि ॻाल्हि सच साबित न थी। प्रिया कुमारी जी पासे बिलाशहजादपुर, रतोदेरो, मीरपुर पटोरो ऐं ॿियनि शहरनि में احتجاج।

मलीर जे इलाइक़े के कुकरापार जे हिक घर मां माउ ऐं धीउ जा पाउ लॻल लाश आहे। पुलिस मूजिब औरत जी सुञाणप सबा ज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं निंगरी सुञाणप नबीहा थी मोहम्मद हनीफ़ तौर थी आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾिया आहिनि। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।

0: मदीन वेझो पुराणी तकरार था अधड़ोट शख्स कहाड़ियन जा वार करे कतल जवाबदार फरार गोठ गुरम खान कोसो में जवाबदार बनी ते सुतल मोहम्मद इस्माइल कोसो के कुआड़ियों हणी कतल कयो वारिसन जो चवण आए त हुसैन बख्श कोसो दौर से पुरानो तकरार हलंदड़ हो जैता वाक्यो पेश आयो है पुलिस वाक्य वारे हथ पहुंची जांच शुरू करे छदी है शकी जवाबदारन चू कुछ औरतू गिरफ्तार पन्ने अकिल वेझो औरत मुबैना तौर कर इल्ज़ाम हेठ कतल लाश दरिया में लोड़ियो वो कच्चे वारे इलाके में नवीदा थी फिरोज मेहर के मुबैना तौर कर इल्ज़ाम हेठ कतल कर पुलिस चवण है वाक्य की जांच शुरू कर छी है जांच बादी हकीकतों सामू ईद नंढो मोहम्मद खान भरसां घर जी भित किरण सबबि नीगर दबजी फोत घोट जम्मू पाक में भित किरण सबबि छह सालनि जो मासूम नीगर रिज़वान लगारी दबजी फोत थी वियो बलोचिस्तान जे इलाइक़े कोहलू ऐं भर पासे में हिकु ई ॾींहं में टे भेरा ज़लज़लो मौसमियात खाते मूजिबि कोहलू में पहिरियों ज़लज़लो सुबुह 10:25 ते ऐं ॿियो 10:58 ते आयो टियों भेरो ज़लज़ले जा लोॾा शाम 4:49 ते महसूसु कया विया टे ज़लज़ले जो ज़ोर 5.1 ऐं 19.17 किलोमीटर रिकॉर्ड कई वई वेनेज़ुएला में ज़लज़ले सबबि थियल तबाही वधीक ख़ौफ़नाक थी वई मलबे जो ढेर बणियल इमारतनि मां माण्हुनि खे कढण वारो ऑपरेशन जारी वेनेज़ुएला जी हुकूमत ज़लज़ले सबबि फोतियुनि जो अंग वधी 579 थी वियो 2980 ज़ख़्मी किरियल इमारतनि जे मलबे हेठां दॿियल हज़ारे माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ इमदादी कार्यवाहियुनि जो सिलसिलो जारी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: दिली अकीदत तो एहतराम के साथ हदिया अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आता है मुहर्रम का जो हर साल महीना सिखलाता है इखलास व मोहब्बत का करीना जुल्मत गहे बातिल में भी मिल जाती है मंजिल शब्बीर की गर फिक्र से हो और नूर जो सीना
3: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चंद फरमायो मोमिन के यो ज़ेब न दींदो आहे त उहो कंहिंखे गुनाह कंदे ॾिसे ऐं उन खे न रोके

0: इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
2: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
3: अमा बुधी रया आयो जीए एफएम नेटवर्क ते मुहर्रमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।

0: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यू आर वॉचिंग HBN बुलेटिन।
2: सिलसिलो समूरे मुल्क में योम आशूर ते या हुसैन जी सदाउन सा मातवी जुलूस करबला जे मैदान में इस्लाम जी सरबुलंदी। अज़ीम कुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि साथियुनि खे भेटा पेश। शबीह आलम ताबूत ऐं ज़ुल्हिजना जे जुलूसनि दौरान अज़ादारनि जी सीनाज़नी। कराची में नश्तर पारक बरामद मातवी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा तरमीनार। रोहिड़ी जो तारीख़ी नव डालन वारो मातवी जुलूस 36 कलाकनि खां पोइ शहीदनि जे कब्रस्तान वटि नर। लाड़कानो शहीद बेनज़ीराबाद ऐं मीरपुर खां डिवीजन जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि मातमी जुलूस कढिया विया। ठठो सिजावल बदीन मिठी उमरकोट खेरपुर नौशरो फिरोज नाबशाह सांगड़ मटियारी दादू ऐं जामशोरे में बि आज़ादारी। टंडो अलाया टंडो मोहम्मद खान घोटकी कश्मोर कंदकोट जेकाबाद शिकारपुर कंबर शदादकोट में बि मातमी जुलूस ऐं मजलिसूं बरपा। आज़ादारनि पारां ज़ंजीर ज़नी करे शहीदनि खे भेटा पिया। अमेरिका ऐं नार मुल्कनि आबनाए हुर्मुज़ में बिना रंडक सामूंडी चुरपुर खे इलाइक़ाई ऐं आलमी सालमती लाइ ज़रूरी कराइजी छॾियो। आबनाए हुर्मुज़ में कंहिं बि क़िस्म जो टूल या फीस रद्द। अमेरिका ऐं ईरान में मुफ़ाहमती यादाश्त ते सहिंची आजां। पाकिस्तान ऐं कतर जी टियाकड़ी जे किरदार जी साराह। अमेरिका ऐं नार सहकारी काउंसिल जे वज़ारती इजलास खां पोइ जारी बयान में चयो त पायदार इलाइक़ाई अमुन ऐं सलामती लाइ ईरान जे बैलिस्टिक मिज़ाइल ड्रोन ऐं खिते में प्रॉक्सी ग्रुपनि जी हिमायत सूधो समूरनि ख़तरनि खे मुंहुं ॾियणु ज़रूरी आहे। ईरान सां को बि वापार ऐं सीड़पकारी मुफ़ाहमती यादाश्त ते अमलदारनि सां मशरूत आहे। GCC मुल्कनि जे वज़ीरनि पारां ईरान ते इराक में प्रॉक्सी ग्रुपनि जी हिमायत जा नार मुल्कनि ते हमलनि जी बि मज़मत। ईरान पारां अमरीका ऐं नार सहकारी काउंसिल जो गॾियल बयान शरअंगेज़ करार ॾींदे मुसमत नार मुल्कनि खां इलाइक़ाई पॉलिसी ते नए सिर गौर जो मुतालबो। ईरानी परॾेह वज़ारत जारी बयान में चयो आहे त अमरीकी फ़ौज विचोभर में मौजूदु इलाइक़ाई मुल्कनि लाइ ॿाहिरि आहे। अमरीका जे नार मुल्कनि जी सिक्योरिटी वारी दावा बेमाना आहे। नार मुल्क पंहिंजी सरज़मीन मुस्तक़बिल में ईरान ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थियणु न ॾियनि। खिते में पायदारी सलामती परॾेही मुदाखलत बिना इलाइक़ाई मुल्कनि जे बतरफ़ी सहकार सां मुमकिन आहे। नार मुल्क विचोभर खे एटमी हथियारनि खां पाक ज़ोन बणाइण जी हिमायत कनि। ईरान हुर्मुज़ में अदम इस्तक़ाम जो ज़िमेवार अमरीका इसराइल ऐं हमलनि में शरीक मुल्कनि खे करार ॾींदे चयो त आबनाए हुर्मुज़ में सामूंडी जहाज़नि जी अचु वञ ओमान सां जंगबंदी यादाश्त तहत थींदी।
3: गवर्नमेंट छो न चाहींदी त कंहिंजो ॿार उनखे वापसि मिले। एफर्ट्स अञा बि असां कयूं पिया। असां ना उमीद न आहियूं ऐं जेको जंहिं धाड़ेल वटि
4: उहो
3: पंहिंजो हींअर मूंखे
4: उन
3: धाड़ेल जो जेको असांजे अमजद शेख साहब चयो या उन टाइम ते तनवीर तुनियो साहब चयो त असांखे उनजी ज़िंदा आहे ऐं उहे जेका आहे किथे मौजूदु आहे। जॾहिं असांखे ख़बर पई त असां काफ़ी कोशिश कयूं ऐं इहे ई एफर्ट्स हुयूं जो असां कच्चे में बि काफ़ी इंफॉर्मेशन रखी। लेकिन हींअर जेका मौजूदा सूरत हाल आहे हींअर सिंध में जेको कच्चे जो एरिया आहे उन में फुटप्रिंट्स आहिनि गवर्नमेंट जा असांजी इंटेलिजेंस एजेंसीज जा ऐं पुलिस जा। त उम्मीद इहा ई आहे त जे उहा ज़िंदा आहे त
4: इनशाला
2: बिरया ऐं उजाला ज़िंदा आहिनि त बाज़ियाब कराए वठंदासीं। कोशिशूं करे रहिया आहियूं। घर वसी ज़ियालंजार जूं आबशाह में मीडिया सां ॻाल्हियूं। ज़ियालंजार चयो त प्रिया जंहिं धाड़ेल वटि हुई उहो मारिजी वियो। नालो हिन वक़्तु यादि न आहे। SSP अमजद शेख ऐं तनवीर तुनियो ॿुधायो हो त प्रिया ज़िंदा आहे। हैदराबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ज़ियालंजार चयो त सिंध काबीना में तब्दीलियुनि बाबति अफ़वाह हलंदा रहंदा आहिनि। पार्टी क़यादत जी मंज़ूरी आहे जंहिंखे तब्दील करे फ़ैसिलो सभिनी खे क़बूल करणो पवंदो। बोरीबंद लाशनि जी धमकी कंहिं आम माण्हू न पर हिकु MP असेंबली जे फ्लोर ते ॾिनी। जांच रिपोर्ट स्पीकर खे ॾींदसि। सभु कुझु वाज़े थींदो। सिंध पुलिस जूं पघारूं पंजाब पुलिस खां वधीक आहिनि। आशूर जे ॾियारे ते सिंध में को बि अणवंदड़ वाक़ियो पेश न आयो आहे। असां ज़िलनि में मोबाइल नेटवर्क बंदि कयो वियो आहे।
5: एक और वाकया मारम में हुआ था, प्रिया कुमारी जो है सबील बांटते हुए गुम हुई, अभी तक बाजियाब नहीं हुई, क्या जिंदा है?
6: देखिए मुझे उसके बारे में इतना नहीं है, ये बात है पुलिस अपनी कोशिश पूरी कर रही है, कई बार वो करीब पहुंच चुकी है, लेकिन ये वाकई एक ऐसे वाकये जिसको अभी तक हमने रिकॉर्ड किया है।
2: पुलिस केतरा ही बेरा प्रिया कुमारी के वेझो पहती पर बाजियाब न कराए सकी, वे वजीर जो कराची में मीडिया से गाल साफ ही वे वजीर का सवाल किया तो प्रिया कुमारी शो बाजियाब न थी सकी आए, जिंदा आए या न? वे वजीर जवाब दिनों तो मुख्य उन बाबत का जान ना है, पुलिस पैं कोशिशों कर रही है।
7: जो डो सिर्फ ए सिर्फ यो हो जो इन इमाम हुसैन अल इस्लाम जी सबिल पे विराई
8: असा अज भी सभी सिंधी मानून के अपील था क्यों त प्रिया कुमारी जे आजादी ला एकड़ो सगारो एहतजाज कन जे उनके फौरी तौर से आजाद कर।
2: प्रिया कुमारी जी अगवा के 5 साल मुकम्मल, पुलिस मासूम न्याणी के बाजियाब कराने में नाकाम थी वही। प्रिया कुमारी जी बाजियाबी लाए फरीदाबाद ए बानसईदाबाद में आजादारन जो एहतजाज, प्रिया ए उजाला के फौरी तौर बाजियाब कराने जो मुतालबो, प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी पारा अज बबलो बाईपास से देने जो ऐलान। इस्माइल डायरी की हालत गणती जोगी है, खानगी अस्पताल में इलाज कराए संदस हयाती बचाई वे। भेण हमीदा डायरी जो मुतालबो, हमीदा डायरी चो तो भाव इस्माइल डायरी जो अस्पताल वारी तस्वीरों वायरल थे बाद खेस सेंटर जेल लाड़काने मुंतकिल के वो, भाव की हालत गणती जोगी है, खानगी अस्पताल में इलाज कराए संदस हयाती बचाई वे।

मलिर नदी भरिसां घर मां माउ ऐं धीउ जा लाश हथ, पुलिस मूजिबि औरत जी सुञाणप टीह वरियनि जी सभा ज़ाल मोहम्मद हनीफ़ ऐं संदसि अठ वरियनि जी धीउ नबिया तौर थी। वाक़िए वारे हंधि तां शायदियूं गॾु कयूं पियूं वञनि। पोस्टमार्टम लाइ लाश जना इस्पताल मुंतक़िल कया विया। ऐं वेंसवेला में सिलसिलनि तबाही मचाए छॾी, इमदादी कार्रवायूं जारी। बरतानवी मीडिया मूजिबि सिलसिले खां पोइ गुम थियल माण्हुनि जो अंगु 50,000 खां वधी वियो। 599 माण्हू फोत, 3,000 खां वधीक ज़ख़्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे पारां फोतियुनि जो अंगु 10,000 खां वधण जो ख़र्चो। राजधानी कराकस ऐं साहिली शहर लाइगोरा में तबाही जा मंज़र। वेंसवेला जे घरू वज़ीर मूजिबि लाइगोरा में सिलसिलनि सबबु 100 खां वधीक इमारतूं किरी पियूं, 70,000 खां वधीक ख़ानदान मुतासिर थिया। अमरीका, ब्राज़ील ऐं केनेडा सूधो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जूं रेस्क्यू टीमूं वेंसवेला पहुतियूं। यूनिसेफ पारां ज़िलज़िले मुतासिर ॿारनि जी मदद जी अपील।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: गुलहाए अकीदत व एहतराम बहुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। सफर तवील है, राह निजात छोटी है, बहुत है जिक्र अली और हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली है नाम बड़ा और कायनात छोटी है।
3: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो, असा जो पेरोकार उ आहे जहें जो दिल हर किस्म जी खयानत धोखे आए फरेब का पाक हुजे।

नगर हर एक लोग का छोड़ो सर सभी से देखो शुपर उसके नियो का खबर जहाँ में हर जबान

0: इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: अमा बुधी रहा आयो जीए एफएम नेटवर्क ते महरमुल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन
1: हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद
2: हुसैन हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है निकल निकल के रोता है दिन छुप छुप के रात रोती है।
0: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

ईरान की बहरी नाकाबंदी दौरान अमरीकी फौज पारा तहवील में वरतल बवी ईरानी मुहाणा पाकिस्तान पहुंची व्या। नायब वजीर आजम इसहाक डार तस्दीक कदे बवी ईरानी मुहाणा कराची पौता संदन डे वापसी लाय ईरानी अख्तियार से राबते में आयो। मुहाणन की बाहिफाजत वापसी लाय अमरीका ईरान से लागीतो राबते में हुआसी। ये अमरीकी तहवील में वापस करायल ईरानी मुहाणन जो चौथों ग्रुप है।

अमरीका ईरान जंग खां पोइ यूएई ऐं ईरान जो पहिरियों भेरो आला सतह ते बाज़ाब्तो राब्तो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॿेड़ी सर्विस बि बहाल थी वई। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची ऐं यूएई जे हम मनसब विच में राब्ते दौरान ख़ते में थींदड़ तब्दीलियुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ईरान अमरीका माहिरे ते मुकमल अमल दरामद ते ज़ोर भरियो।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो ईंदड़ महीने ईरान वञण जा इम्कान शहीद आयतुल्लाह खामनई के जनाज़े नमाज में शिरकत कंदो ज़रीन जो चवण आए तो वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी दौरे के हतमी शक्ल डिनी पी वे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सा गड आला सतही वफद भी होंद शहीद आयतुल्लाह खामनई की तदफीन ईंदड़ महीने कई वी जंग में पाकिस्तान जो किरदार क़यामत ताईं याद रखियो वेंदो पाकिस्तान ईरान ऐं अमरीका में ठाह कराए मुस्लिम मुल्कनि ॾाढो सुरखुरो थियो आहे दिफ़ा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान जो किरदार यादि रखियो वेंदो मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहाद नज़र अची रहियो आहे ईरान फ़लस्तीन ऐं लबनान जी अवाम जी क़ुर्बानीनि रंग लाथो आहे फ़लस्तीन जी आज़ादी वारो वक़्तु बि परे नाहे लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिल कंदो ईरानी फ़ौज आबनाह हरमुज़ मां घुसण जी कोशिश कंदड़ चार आयल टैंकर्स खे मोटाए छॾियो आबनाह हरमुज़ में अमान जे सामूंडी इलाइक़े में कार्गो जहाज़ ते बि हमिलो ईरानी पासदारनि इनकलाब चयो आहे त बहिरी जहाज़ रुगो ईरान जी मंज़ूर थियल गुज़रगाहनि मां ई घुसी आबनाह हरमुज़ ते ईरान जे कंट्रोल सबब इस्तेहकाम बरक़रार आहे ख़िते जा नंढा मुल्क मखसूस ख़ातिरनि सां धोखो न खाइनि अहिड़नि मुल्कनि जो वजूद वॾियुनि ताक़तुनि जी सरपरस्ती जे करे ई हूंदो आहे ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई जे सलाहकार जो बयानु अली अकबर विलायती चयो आहे त जेके ईरानी कंट्रोल सां ख़िते जे मुल्कनि जो इस्तेहकाम बरक़रार आहे ओलह ख़िते खे बरबरीत ऐं फुलुट खां सवाइ कुझु नाहे ॾिनो ख़िते जी नई सिफ़बंदी में इन्हनि नंढनि मुल्कनि जी का बि हैसियत नाहे

0: ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਿਆ ਮਨਾ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਥੀ ਮਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕੇ ਪੰਜ ਜਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਜਾ ਤਾਈਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਟਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅਸਾਂ ਨਿਆਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਦੇਣ
1: ਅੱਜ ਖਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਗ ਅਸਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗਰਾਰ ਜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜੇ ਪੇੜ ਮੇ ਸਬੀਲ ਹਲਾਈਂਦੇ ਉਤਾਂ ਮਿਸ ਥੀ ਵਈ ਆਏ अज भी उन अखिन में गोरा उ माँ पी प्रिया जा राजकुमार उनकी घरवारी अज भी वाटू निहारे थी मौला अली के बाधाए थी हे मौला अली जै पिड़ में मुझी न्याणी वही है वह असि न्याणी इन्हीं पिड़ ती मिली अज भी उन यकीन है
2: सखर के इलाके संग्रार में पंज साल अग योम आशूर से सभी विराट दौरान अफवाह थियल मासूम प्रिया कुमारी जो को डस पतो न पो सिंध हुकूमत सिंध पुलिस पहरे ढी का अज ताई वारिसन के रुगो ठला आसरा डींदी रही सखड़ियों दवाओं कंदे नजर आई पंजन साल दौरान सिंध में ब हुकूमतू आयु चार आई जी तब्दील थिया केतरा ही पेरा पुलिस प्रिया के वेझो होने की दावा कई पर एक भी गाल सच साबित न थी सकी प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाइ शदाद कोट अतो देरो मीरपुर भटोरो बेन चरण में एतजाज पुलड़ी शाह करीम में कार से हथियारबंदन की फायरिंग पीपी अगवाण जाल समेत कतल संदस मासूम पुट जख्मी हथियारबंदन फायरिंग करे पीपी अगवाण गुलाम नबी मक्सी संदस जाल समरीन के कतल कर छो गोलू लगन सबब गुलाम नबी मक्सी जो पंज साल पुट सैफुल्ला जख्मी कतल थियल गुलाम नबी मक्सी जो लाश ए जख्मी बाडो टंडो मोहम्मद खान अस्पताल मुंतकिल औरत समरीन जो लाश पुलड़ी शाह करीम की अस्पताल मुंतकिल वाक्य का पुलड़ी शाह करीम शहर सोग में बंद
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: दिली अकीदत तो एहतराम के साथ हदिया अशार बहुजूर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कत्ले हुसैन नस्ल में मरगे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद
5: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो जेको शख्स इबादती खुदा इन अंदाज में करे जेड़ो उन जो हक है त खुदा उन जो हाजत ऐं ज़रूरतुनि खां वधीक उन खे अता कंदो आहे

0: जॾहिं करबला में फौजी यज़ीद मौला हुसैन खे घेरे छॾियो
1: त पोइ नवासाए रसूल फरमाइन था
0: ऐ ज़ालिमो तव्हां खे औलाद मोहम्मद सां एतिरी ही नफ़रत आहे त छॾियो
1: मां पंहिंजे बचड़नि खे वठी सिंध हलियो वञा छो जो सिंध वारा अली जे औलाद सां मोहब्बत कनि था सिंधी टोपी अजरक पाए रसूल जे अहल बैत जो एहतराम कनि था
2: हर दिल जी सदा या हुसैन।

0: निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अड़ो अमल जंग बंदी माहिदे की भजगड़ी है बेवकूफी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है ड्रोन हमले से इंतई महंगी सामुंडी जहाज के मामूली नुकसान थो। इन बावजूद मुतासर जहाज पैं मंजिल तरफ रवा दवा होजन के काबिल है।

ईरान जी बहरी नाकाबंदी दौरान अमरीकी फौज पारा तेवीन में वरतल बावी ईरानी मुहाणा पाकिस्तान पहुंची वा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार तस्दीक कंदे चयो आहे त बावी ईरानी मुहाणा कराची पहुता आहिनि। संदन ॾे वापसी लाइ ईरानी इख़्तियारनि सां राब्ते में आहियूं। मुहाणनि जी बाहिफ़ाज़त वापसी लाइ अमरीका ऐं ईरान सां लाॻीतो राब्ते में हुआसीं। हीअ अमरीकी तहवील मां वापसि करायल ईरानी मुहाणनि जो चोथों ग्रुप आहे। अमरीका ईरान जंग खां पोइ यूएई ऐं ईरान जो पहिरियों भेरो आला सतह ते बाज़ाबता राब्तो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॿेड़ी सर्विस बि बहाल थी वई। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं यूएई जे हम मनसब विच में राब्ते दौरान ख़िते में थींदड़ तब्दीलियुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ईरान अमरीका माहिरे ते मुकमल अमल दरामद ते ज़ोर भरियो। इस्लाम जी सर बुलंदी लाइ करबला जे मैदान में लाज़वाल कुर्बानी ॾींदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलाम ऐं संदसि जान इसारनि खे सलाम। सिंध समेत समूरे मुल्क में योम आशूर ते मातमी जुलूस बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस रिवायती रस्तनि तां थींदो। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर वटि नहर थी वियो। शाम ग़रीबा बरपा। इस्लामाबाद लाहौर पिशावर कोयटा गिलगित बल्तिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर में बि मातमी जुलूस कढिया विया। योम आशूर ते चइनि सूबनि समेत समूरे मुल्क में सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली तां बरामद थियल मातमी जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। पंहिंजी आख़िरी मंज़िल करबला दादर शाह जे पिण ते नर थी वियो। जाम चोरो ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि वज़ादारी दादू शहर समेत ज़िले जे समूरनि शहरनि में मातम मटियारी टंडो लयार ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान ज़िलनि में बि योम आशूर ते हर तरफ़ याव सेन जूं सदाऊं बुलंदु। फदीन चट्टो ऐं सजावल ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। सबीलनि ऐं न्यास नगर जो बंदोबस्तु बि कयो वियो।

शहीद बे नजीराबाद ऐं मीरपुर खास डिवीजन में बि करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मातमी जुलूस ऐं असादारी नवाबशाह शहर समेत ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातमी जुलूस बरामद थिया। नौशेरो फिरोज ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में ख़मे हुसैन अल सलाम में असादारी सागर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं। मीरपुर खास जिले में भी करबला के शहीदों के भेटा पेश कर लाए मातमी जुलूस बरामद उमरकोट शहर समेत जिले के नंढन वडन शहर में आजादारी तरपारकर के शहर मिट्टी और बेन इलाकन में करबला के शहीदों के भेटा पेश कर लाए मातम रोडन रस्तन से सबीलू लगाई हुई सिक्योरिटी जा भी सख्त इंतजाम।

सखर ऐं लाड़कने डिवीजन में बि योम आशूर जा मातमी जुलूस कढिया विया। रोहड़ी में नव ढालनि वारो तारीख़ी मातमी जुलूस पंहिंजी आख़िरी मंज़िल शहदा कब्रिस्तान वटि नहर थी वियो। सखर शहर समेत ज़िले जे ॿियनि इलाइक़नि में बि अज़ादारी। खैरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में मातमी जुलूस बरामद थिया। लाटकाणो ऐं कंबर शहदादपुर ज़िलनि जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातम। जेकबाद, कश्मोर, कनकोट ऐं शिकारपुर ज़िलनि में बि योम आशूर अक़ीदत ऐं एतराम सां मल्हायो वियो सिक्योरिटी सां।

योम आशूर ते सिंध में सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम। कराची के मातमी जुलूस में वे वजीर, गवर्नर, घर वजीर ए डीजी रेंजर्स पहुंची सिक्योरिटी इंतजाम जो जायजो वरतो। वे वजीर सिक्योरिटी जा फुल प्रूफ इंतजाम करते सिक्योरिटी दारन के शाबाश दींदे है योम आशूर ते अमन अमान बरकरार रखण इंतजामिया पुलिस ए रेंजर्स की गडियल कामयाबी है। कानून लागू कर इदारन के डी रात मेहनत सबब योम आशूर पुरमन रो आलम सगोरन भी भाईचारे यकजहती लाए भरपूर सहकार कर।

सिंध में महिरमल आराम दौरान सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम किया विया हुआ। हुकूमत जी पहिरीं तरजीह हुई त कंहिं बि क़िस्म जो अणवणंदड़ वाक़ियो न थिए। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में मातमी जुलूस जो दौरो करण बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घरू वज़ीर ज़ियालत सनजार चयो त सिंध पुलिस जूं पघारूं पंजाब पुलिस खां वधीक आहिनि। सिंध जे समूरनि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स खे सेफ सिटी बणायो वेंदो। सूबाई काबीना में तब्दीली वारियूं ख़बरूं अफ़वाह आहिनि। पार्टी क़यादत चाहे त तब्दीली बि करे सघे थी। MQM जे MPA पारां ऐवान में ॾिनल धमकी जी जांच जारी आहे। जांच रिपोर्ट स्पीकर वटि पेश करण बाद कार्रवाई थींदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो ईंदड़ महीने ईरान वञण जा इम्कान। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई जे जनाज़े नमाज़ में शिरकत कंदो। सरियन जो चवण आहे त वज़ीर आज़म जे ईरानी दौरे खे हतमी शकल ॾिनी पई वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां गॾु आला सतही वफ़द बि हूंदो। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई जी तदफ़ीन ईंदड़ महीने कई वेंदी। ईरान जंग में पाकिस्तान जो किरदार क़यामत ताईं यादि रखियो वेंदो। पाकिस्तान ईरान ऐं अमरीका में ठाह कराए मुस्लिम मुल्कनि ॾाढो सुखरो थियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान जो किरदार यादि रखियो वेंदो। मुस्लिम मुल्कनि जो बि हिकु नओं इतिहादु नज़र अची रहियो आहे। ईरान फ़लस्तीन ऐं लबनान जी अवाम जी क़ुर्बानीअ रंग लाथो आहे। फ़लस्तीन जी आज़ादी वारो वक़्तु परे नाहे। लबनानी अवाम बि इसराइली ज़ुल्म खां निजात हासिलु कंदो।